0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

हैं दोस्तों, 107 एफएम रेनबो पर मैं आपकी दोस्त सविता स्वागत करती है, अभिनंदन करती है कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप पर। और जी हाँ, पूरे एक घंटा मैं रहूँगी आपके साथ लेकर कार्यक्रम नॉन स्टॉप गपशप और होंगी ढेर सारी हमारी आपकी बातें। तो पहले शुरुआत करते हैं कार्यक्रम के एक

जी हाँ, हमारे इशारे तो बस इतने से हैं कि हम बैठकर नॉनस्टॉप गपशप करने वाले हैं 1 घंटा, और आपको अच्छे अच्छे गीत सुनवाने वाले हैं, और कई कई टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं। फिलहाल अखबारों की खास सुर्खियों में हम आपको खबर दे दें कि कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मेगा प्लान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए चुस्ती के साथ, दुरुस्ती के साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है और योग दिवस के लिए 2 दिन कोलकाता में रहने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, जो कि पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव में अपना एक अहम हिस्सा निभाने आ रहे हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पश्चिम बंगाल को मैं राजधानी कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मनाया जाएगा, और यह 20 जून को मनाने की अधिसूचना दे दी गई है। मोदी जी 2 दिन 20 और 21 जून को कोलकाता में रहने वाले हैं, और दोस्तों इस दिन कोलकाता में उत्सव ही उत्सव होंगे, तो योग दिवस पर आप भी योगा करने के लिए तैयार हो जाइए। और एक और आपको खबर दें कि 13 जून को आयोजित होगा पासपोर्ट मेला। पासपोर्ट आवेदनों के लंबित मामलों को कम करने के लिए कोलकाता के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने शनिवार को पासपोर्ट मेला आयोजित करने की घोषणा की है। यह विशेष अभियान आनंदपुर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र में आयोजित किया जाएगा, जहां लगभग 2000 आवेदनों का निस्तारण होने की संभावना है। तो दोस्तों ये थी आज के अखबारों की खास सुर्खियां, और आज के दिन क्या होगा

0: आज के दिन
1: देश दुनिया के इतिहास में 12 जून को क्या खास घटा, ये आपके साथ कर लेते हैं साझा। 1381 में इंग्लैंड में किसानों ने विद्रोह किया। जी हाँ, 1665 में न्यू एमस्टर्डम कानूनी तौर पर ब्रिटेन का हिस्सा बना और यॉर्क के ड्यूक के नाम पर इसका नाम

न्यूयॉर्क रखा गया दोस्तों। 1929 में एन फ्रैंक की डायरी में दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। इसमें उन्होंने अपने नाजियों से छुपकर बिताए गए समय के बारे में लिखा है। एन फ्रैंक की मौत दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यातना शिविर में हो गई थी। 12 जून को उनका हुआ था जन्मदिन। 1932 में भारत की मशहूर भरतनाट्यम नृत्यकी और अभिनेत्री पद्मिनी का जन्मदिन है। और दोस्तों आज के दिन खास जो व्यक्ति जन्म लिए उनका नाम है, भारतीय सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं। श्यामा का जन्म 1935 में हुआ। और आज के दिन खास दिवस मनाया जाता है, जी हाँ, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस।

दोस्तों, बाल श्रम एक जटिल सामाजिक, आर्थिक और मानव अधिकार संबंधित समस्या है जो न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर यह एक चिंता का विषय है। बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण कार्य में नियोजित करना या काम के लिए मजबूर करना कानूनन अपराध है। यह न केवल बच्चों की शिक्षा और खेलने के अधिकार से वंचित करता है बल्कि उनके मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और नैतिक विकास को भी गहरा नुकसान पहुंचाता है और उनके जीवन को अंधकार में बनाता है। तो दोस्तों, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कि इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जहाँ कहीं यदि बाल श्रम हो रहा है तो वहाँ पर उसका प्रतिवाद किया जाए। आज हम नॉन स्टॉप गपशप पर यही विषय रखने वाले हैं कि बाल श्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं और क्या बाल श्रम करवाते हैं और नहीं करवाते, तो कहीं करते हुए देखते हैं तो क्या प्रतिवाद कर पाते हैं और नहीं कर पाते तो कारण क्या है। खुल करके आप अपनी बातें हमसे कर सकते हैं और जो प्रैक्टिकल है, जो सच्चाई है, उसको हमारे सामने रूबरू ला सकते हैं ताकि सरकार इन पर और कड़े से कड़ा कानून बना सके और जो बच्चे हैं जिनके भविष्य को अंधकारमय बना दिया जाता है, उनके पूर्ण विकास को रोक दिया जाता है, ये एक गंभीर विषय है चिंता का। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 2213-1341 पर और बात कर सकते हैं बाल श्रम निषेध दिवस पर।

0: Culture.
1: जी हाँ दोस्तों, कोलकाता में होने वाली सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों की ओर यदि हम आपको लेकर चलें तो सृष्टि नृत्य और कला प्रदर्शन 12 जून को कोलकाता सेंटर फॉर क्रिएटिविटी में ओडिसी नृत्य का एक अनौपचारिक और भावपूर्ण प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही है। इसके अलावा यदि आप साहित्य प्रेमी हैं तो 12 जून से KCC में बंगाली साहित्य की प्राचीन और मध्यकालीन परंपराओं पर एक 24 सप्ताह का विस्तृत कोर्स होने जा रहा है। इसके अलावा थिएटर और नाटक की बात करें तो 13 जून को उसी सप्ताहांत के दौरान ड्रामा डट्स स्टूडियो में मैं तेनू फिर मिलेंगी जैसे मनमोहक नाटकों का मंचन भी होगा। इसके अलावा 12 जून की शाम को द सेटायर क्लब न्यू टाउन में स्टैंड अप कॉमेडी का शो भी होने जा रहा है और टिकट बुकिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां आपके शहर में जो हमने आपके साथ की साझा।
0: कोलकाता कल्चर।
1: आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप।
2: थोड़ी सी बातें और ढेर सारे गाने। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। नॉनस्टॉप गपशप। नॉनस्टॉप गपशप 107 FM रेनबो पर। FM रेनबो पर।
1: दोस्तों, हमने गाना सुनवाने से पहले बात की थी कि हर साल 12 जून को मुख्य रूप से बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा स्थापित ये दिवस बाल मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने और बच्चों के शिक्षा और सुरक्षा के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित ये दिन है। तो दोस्तों, इसी संबंध में हम आपके साथ बात करेंगे कि आप बाल श्रम के विषय में क्या सोचते हैं और क्या आप ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि सरकार जो कर रही है और जो संस्थाएं कर रही हैं उनमें और कैसे इजाफा किया जा सकता है। हम ऐसी ही बातों के साथ आगे बढ़ेंगे और फिलहाल आपके लिए एक गीत लेकर आए हैं तितली।

आंखों में आंसू नहीं सपने होने चाहिए थे, पेट में भूख नहीं जीने की चाहत होनी चाहिए थी, पैरों में जंजीर नहीं उड़ान होनी चाहिए थी, एक जागता खिलता बचपन होना चाहिए था। बिल्कुल दोस्तों, जो बच्चों की उम्र नहीं है और उनके उम्र के हिसाब के अनुसार काम करवाया जाता है, तब तो अनुसार काम करवाया जाता है, उनकी उम्र छोटी होती है और काम अनुपयुक्त होता है तो वो ठीक नहीं। जो उनकी शिक्षा में बाधा डालता है, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा नैतिक विकास के लिए हानिकारक होता है। इसमें वे कार आते हैं जो बच्चों को शोषण की स्थिति में डालते हैं, जैसे कि घरेलू नौकर बनाकर काम कराना, खादानों, ईंट भट्टों या फिर रासायनिक उद्योगों में काम कराना, भीख मांगने के लिए या मानव तस्करी के लिए इस्तेमाल करना। दोस्तों, बाल श्रम के कई एक कारण हैं जिसके कारण ये बाल श्रम करवाया जाता है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम एक गीत सुनवाएंगे।

0: जी हाँ, जिनकी उम्र ही नहीं उनके नन्हे हाथों से कठोर काम करवाया जाए, जिनके कदमों में जान ही नहीं जिन्हें मीलों मील चलवाया जाए, जिनके कंधे हैं नाजुक कोमल कोमल उनके कंधों पर यदि बोझ लाद दिया जाए तो फिर आंखों से आंसू निकलेंगे ही, सपने टूटेंगे ही। और इन सपनों को टूटने देना नहीं है, उन आंखों से आंसू बहते देना नहीं है, तभी तो मनाया जाता है आज के दिन यानी 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस। दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक दोस्त, और देखें वो क्या कहते हैं इस संबंध में। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ आप कौन बोल रहे हैं?
1: गुड मॉर्निंग जी, मैं जीतू बात कर रहा हूँ बिस्तरा से।
0: जीतू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बिल्कुल जी, थैंक यू। और आपका जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छा हो रहा है और गाने भी बजे अच्छे अच्छे
0: जी, शुक्रिया आपका जी।
1: टॉपिक के बारे में मैं कहना चाहूंगा, देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सभी को प्यारे प्यारे मतलब लगते ही है, छोटे छोटे बच्चे तो सभी को प्यार लगते हैं। और बच्चे से जो जैसे कि कोई

0: हम करवाते हैं तो वो एक तरह से नहीं करवाना चाहिए, है ना। और जैसे कि हम लोग देखते हैं जो अभी है ना एकदम बालक है, छोटे हैं, उसको बोलते हैं कि ये लो ये काम कर दो, ये मतलब ये काम करवाना ही नहीं चाहिए उसको।
1: जैसे कि हम देखने जाते हैं, देखते हैं होटल में बच्चे प्लेट्स धो रहे हैं, कहीं कहीं खाना भी बना रहे हैं, कहीं पोछा भी कर रहे हैं।

0: देखते हैं
1: भारी भारी सामान उठा के लेके जा रहे हैं। बिल्कुल,
0: जैसे होटल में देखते हैं कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोगों को काम करने के लिए भेज देते हैं उसकी मम्मी पापा, या बोल सकते हैं जो भी हो, कोई रिश्तेदार है तो कोई भी हो, कि देखते हैं कितना बच्चों को देखते हैं जिसका मम्मी पापा नहीं होता है, तो रिश्तेदार है तो वो भेजते हैं, तो उसको भी नहीं भेजना चाहिए, है ना, क्योंकि उसको अभी पढ़ने लिखने का उम्र है और पढ़ने लिखने का उम्र में ये सब काम करवाना अच्छा नहीं है। तो बस ये बोलना चाहूंगा कि छोटे जितने भी सुन रहे हैं सुनने वालों को, कि छोटे छोटे बच्चे से जो है काम ना करवाए तो वही ठीक है।
1: बिल्कुल, तो जीतू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू।
1: तो दोस्तों, बाल श्रम करवाने के कई एक मुख्य कारण निकल करके आते हैं। पहला है पॉवर्टी यानी निर्धनता, गरीबी। अत्यंत गरीबी जीवन व्यतीत करने के कारण माता पिता कई बार अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बच्चों को काम में लगा देते हैं और बच्चे उनकी कमाई का एक उपयोगी साधन बन जाते हैं। दूसरा है शिक्षा की कमी। सरकारी स्कूलों की, जी माफ़ कीजिए दोस्तों, स्कूलों में कई बार बच्चे पूरी तरह से पढ़ने नहीं जा पाते और जिसके कारण से उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती और उन शिक्षा के अभाव में वो फिर काम करने निकल जाते हैं। इसके अलावा है कि बच्चे, जैसा कि अभी अभी जीतू जी ने कहा कि माता पिता ना होना, तो कई बार अनाथ बच्चे जो हैं जिनके माता पिता नहीं हैं और यदि वो किन्हीं रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं तो वो भावनाओं के अभाव में भी बच्चों को काम करने भेज देते हैं। अक्सर अभिभावक यह नहीं जानते कि बाल श्रम बच्चों की जो एक लंबी जो प्रोग्रेस है, जो उनका विकास है, वो रोक देता है और ये उनके लिए हानिकारक हो जाता है, जो कि गैर कानूनी है। प्रवासी परिवार के बच्चों के पास स्कूल या सुरक्षा का कोई स्थिर आधार नहीं होता और वो श्रमिक बनने पर मजबूर हो जाते हैं। तो ये सब कारण हैं जिनके कारण बच्चे बाल श्रम करने के लिए मजबूर होते हैं। दोस्तों, अभी हम सुनवाएंगे आपको एक और प्यारा सा गीत और उसके बाद आप हमसे जुड़ेंगे और बात करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, इसके कारण उनके समाज पर भी कई एक बच्चों पर दुष्परिणाम होते हैं। और ये दुष्परिणाम क्या पड़ते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर हानि होती है। दोस्तों, बाल श्रमिक होने पर खतरनाक सबसे ज़्यादा जो होता है वो ये है कि खदानें, रसायन कारखाने या ईंट के भट्टे, शारीरिक चोटें, फेफड़ों की बीमारी, त्वचा रोग, थकान, कुपोषण जैसी बीमारियाँ विकसित करते हैं उन बच्चों के भीतर। शिक्षा से तो वो वंचित होते ही हैं, जिससे उनका भविष्य भी अंधकार में रह जाता है। बेहतर रोजगार की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। मानसिक और भावनात्मक हानि होती है लगातार कार्य करते रहने से, मारपीट करने से, गालियों का और अपमानों का व्यवहार सहने से। बच्चे के अंदर मानसिक रूप से कुंठाएं जन्म लेती हैं। बचपन का जो सामान्य विकास होता है वो उन्हें नहीं मिल पाता, जिसके कारण समाज पर भी गहरा असर पड़ता है। और गरीबी मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, गरीबी का चक्र लगातार चलते रहता है और सामाजिक विषमताएं होती रहती हैं। तो राष्ट्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और राष्ट्र पर जब प्रभाव पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्र की प्रगति भी बाधित होगी। तो बच्चे हमारे देश का भविष्य है, उनको सवार कर रखें।

दोस्तों, बाल श्रम एक ऐसी सामाजिक बुराई है जो बच्चों के भविष्य, समाज की एकता और राष्ट्र के विकास तीनों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। ये केवल एक कानून का मामला नहीं बल्कि मानवता का प्रश्न है। इसकी समाप्ति के लिए बहुआयामी, समन्वित और दीर्घकालिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। जब तक हम ये नहीं देखते कि बच्चा स्कूल नहीं जाता, खेल नहीं पाता, सपने नहीं देख पाता, तब तक विकसित भारत की कल्पना अधूरी है। और आप यदि कहीं बच्चे पर ऐसा सितम होते देखें, जुल्म होते देखें या अन्याय होते देखें, तो आप भारत सरकार द्वारा निर्मित पोर्टल है पेंसिल, इस पर जाकर के आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में जाकर के भी उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं जो कि बाल श्रम करवा रहा है। तो चलते चलते हम तो बस इतना ही कहेंगे कि ला हाथ में उसके खिलौना रख दूं, आंखों में एक सपना रख दूं, कदमों में रख दूं एक रफ्तार, उदास है बचपन उसका, मुस्कुराहटों का एक भविष्य रख दूं, और चलते जाना है, रुकना तो कहीं नहीं है। इसके साथ ही आपकी दोस्त सविता फिलहाल आपसे चाहेगी इजाज़त। मुलाकात होगी 11:10 पर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में, FM गोल्ड यानी खरा सोना पर। और हाँ, अगली मुलाकात कब होने वाली है तो बस बता देती हूँ कि अगली मुलाकात तो अब हमारी जुलाई में होने वाली है, क्योंकि मैं जा रही हूँ कहीं घूमने, थोड़ा सा ब्रेक लेने। तो दोस्तों, मिलूँगी आपसे जुलाई में। तब तक के लिए आपकी दोस्त सविता को दीजिए इजाज़त। खुश रहिएगा, मुस्कुराते जरूर रहिएगा, और जब आऊँगी तो आपकी मुस्कुराहटों पर एक कवल खिलते जरूर देखूँगी। हम तो जाते हैं, मैं कदे से मीर, फिर मिलेंगे घर खुदा लाया, और खुदा हमको जरूर लेकर आएगा।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन, सुनछेन गान दोरिया 107 FM रेनबो ते। गान दोरिया, गान दोरिया, छुए जाक मन, छुए जाक।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: एफएम रेनबो पर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आकाशवाणी कोलकाता से और अगला कार्यक्रम एफएम रेनबो की परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 एफएम रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों, परियोजना प्रस्तुति में आज हम लेकर आए हैं अन्नपूर्णा भंडार योजना। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल सरकार की एक नई कल्याणकारी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। ये योजना 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान की गई वादा के अनुसार इसे लागू किया गया है। नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 3 जून 2026 से इसे आधिकारिक रूप से लागू कर दिया। इस योजना का मकसद पात्र महिलाओं को सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता देना है, ताकि परिवारों की आर्थिक स्थिरता बढ़े और महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकें। सरकार का लक्ष्य केवल वित्तीय लाभ देना नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार रोककर सही लाभार्थियों तक मदद पहुंचाना भी है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। पात्र महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजे जाएंगे। फंड ट्रांसफर का पहला चरण 3 जून 2026 से शुरू हुआ है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि 1 जून 2026 से बंगाल की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए सफर पूरी तरह से मुफ्त कर दिया गया है। इस योजना का लाभ कौन कौन उठा सकता है उसके बारे में भी आपको बताएं। आवेदक महिला होनी चाहिए, पश्चिम बंगाल की स्थायी निवासी हो, साथ ही उम्र 25 से 60 वर्ष के बीच हो, आयकर देने वाली न हो और राज्य अथवा केंद्र सरकार, पंचायत, नगर पालिका, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में स्थायी कर्मचारी या पेंशनधारी न हो, बैंक खाता आधार से लिंक होना जरूरी है। आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए इस योजना को लाभ लेने के लिए? आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक पासबुक की कॉपी या कैंसिल चेक। साथ ही सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रास्ते खोल रखे हैं। ब्लॉक ऑफिस, नगर पालिका या पंचायत कार्यालय से निशुल्क फॉर्म लेकर 15 से 17 जून तक जन कल्याण शिविरों में फॉर्म मिलेंगे, उसे भरकर आवेदन देकर उसे आप

0: डाल दें। 11 से 12 पेज का ये फॉर्म है, नीले काले पेन से भरें, नीले अथवा काले पेन से भरें। स्व सत्यापित दस्तावेज लगाकर स्थानीय कार्यालय में जमा करें और एक्नॉलेजमेंट स्लिप अवश्य लें। ऑनलाइन प्रक्रिया आधिकारिक पोर्टल socialsecurity.wb.gov.in या wb.gov.in पर जाकर फॉर्म भरें। मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन और राशन कार्ड नंबर से डिटेल ऑटो फैच होगी। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में BDO अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस और शहरी क्षेत्रों में SDO स्तर पर सत्यापन होगा। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल की महिलाओं के लिए एक बड़ी वित्तीय सौगात है। 3,000 रुपये की मासिक मदद और फ्री बस यात्रा से लाखों परिवार का सीधा फायदा होगा। हालांकि फॉर्म की जटिलता और सत्यापन प्रक्रिया को सरल बनाना सरकार के लिए चुनौती है, यदि सही ढंग से लागू की जाए तो ये योजना अपने आप में एक बहुत बड़ी मील का पत्थर साबित होगा।
1: परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर। टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर
0: तड़का लग गया है। जी हाँ, तीन का तड़का कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और एंटरटेनमेंट का तड़का लग चुका है। हमें मालूम है कि आपके दूसरे दिन यानी कि इस एक ही दिन के जो दूसरा भाग है, उस भाग को और भी जायकेदार मज़ेदार करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम तीन का तड़का। फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार के आवाज़ में एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। सुनते रहिए, साथ रहिए। और हाँ, पॉपी है आपके साथ आज, लेकिन हम 4 बजे तक नहीं हैं। कितने बजे तक है बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये गीत सुनाएंगे।

बैक आपने दो गीतों को सुना, एक हमने सुनाया सत्य प्रेम की कथा से और दूसरा गीत आपने सुना अमर सिंह चमकीला। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अब से एक नई चीज सामने आ रही है और ये चीज, ये जो धारणा है या सोच है, ये विचार है, ये सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला गृहिणियों के परिवार को नींव बनाते हुए सामने आया है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाएं होम मेकर नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माता हैं। जी हाँ, आपको बताकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गृहिणियों को होम मेकर नहीं बल्कि नेशन बिल्डर यानी कि राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया जाना चाहिए। उनके काम की तुलना किसी पेशेवर से करके उनके योगदान को कम नहीं आंका जा सकता है। सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों की सेवाओं का मूल्यांकन कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह के आधार पर किया जाए। दरअसल हुआ ये था, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पंजाब से जुड़े एक मोटर दुर्घटना मुआवजे मामले में आया है, जिसमें 25 नवंबर 2001 को सड़क दुर्घटना में एक महिला की मृत्यु हो जाती है। उसके पति और 3 बच्चों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में दावा किया, जिसने उन्हें 2.42 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। इसे बढ़ाने का अनुरोध करते हुए हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने दिसंबर में मुआवजे की राशि को और बढ़ा दिया और धीरे धीरे ये 8.43 लाख रुपए तक गई और 7.5% ब्याज देने का भी आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट में फिर गुहार लगाई गई। कोर्ट ने सड़क हादसों के मुआवजे से जुड़े केसों का फैसला 1 साल में करने का आदेश तो दिया ही, साथ ही इस पीठ ने मोटर वाहन कानून से जुड़े मामलों पर व्यापक प्रभाव डालने वाले इस फैसले में एक व्यक्ति को उसकी पत्नी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के कारण अतिरिक्त मुआवजा प्रदान करते हुए उक्त आदेश भी पारित किया। पीठ ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि दुर्घटना में जब किसी इंसान की मौत होती है तब उसकी कमाई या वेतन के हिसाब से मुआवजा तय किया जाता है। इस मामले में भी ये मत है कि गृहिणी व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के विकास में योगदान देती है। गृहिणी राष्ट्र का निर्माण करती है, इसलिए गृहिणी को राष्ट्र निर्माता मानते हुए उसकी घरेलू देखभाल संबंधी सेवाओं के नुकसान का मासिक मूल्य किसी भी स्थिति में न्यूनतम 30,000 रुपये निर्धारित किया गया है। तो ये थी एक बहुत बड़ा फैसला जो लिया गया है सुप्रीम कोर्ट से। और जाहिर है एक अच्छी बात सामने आई कि महिलाएं अब सिर्फ होम मेकर नहीं बल्कि उन्हें राष्ट्र निर्माता का दर्जा दिया गया है। यस, तो बहुत अच्छी बात, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करूं। हालांकि स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 3:22 और 6 सेकेंड, और आपको बता दूं कि हमारा ये कार्यक्रम आज 3:30 तक ही चलेगा। जी हाँ, 3:30 से आप सुनेंगे विज्ञापन द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम, और हमारी और आपका जो साथ है हम एक साथ रहेंगे 3:30 तक। फिलहाल अगला गीत सोना महापात्रो की आवाज़ में फिल्म फुकरे से, बड़ा ही प्यारा गीत है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप यू ऑल विल लव इट।

वैसे दोस्तों स्लो रोमांटिक्स ट्रैक का एक अलग ही मजा होता है, और आइए इसको आगे बढ़ाते हुए सुनाते हैं सिंघम फिल्म से श्रेया घोषाल के आवाज में, साथ में जो आवाज है वो अजय की, इस आवाज के साथ आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत, और गीत को सुनते सुनते हम चले जाएंगे स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम में, और कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको हम सुना रहे हैं अब।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, स्वागत करती हूं आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, मैं हूं अजीत। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: वो लिखते हैं, भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सारे दरवाजे खुल जाएंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने सुंदर संदेश के लिए। जी हाँ श्रोताओ, भाग्य भरोसे बैठे रहने से बेहतर है कर्म करना, जो सफलता का आधार है।
2: जी,
1: पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम सुन लेते हैं।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
1: असिटी गोनियाना मंडी पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी।
2: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी।
1: आप सबको संदेश भेजने के लिए उमंग कार्यक्रम की ओर से आभार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओ, इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय दुनिया की विभिन्न पेय संस्कृतियों पर रहा है।
2: हमने चर्चा की चाय की, कॉफी की और कोको की। आज हम बात करेंगे एक और पेय की, जो चाय, कॉफी और कोको के बाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। ये पेय बहुत स्वास्थ्यवर्धक पेय माना जाता है।
1: जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं सोया पेय की।
2: जी,
1: इसकी अपनी पेय संस्कृति है, खासकर पूर्वी एशिया में। सोया केवल पेय ही नहीं लेकिन एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन भी है।
2: जी,
1: कई समुदायों में खान पान और संस्कृति का ये हिस्सा रहा है,
2: जैसे चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम के समुदायों में। इन देशों में सोया दूध सदियों से सुबह के नाश्ते का अभिन्न अंग रहा है। इन देशों में सोया पेय को स्वास्थ्य, पौष्टिकता और ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है।
1: यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो सोयाबीन मूल रूप से चीन का माना जाता है।
2: जी,
1: ऐतिहासिक और आनुवंशिक अध्ययनों से पता चला है कि चीन की येलो रिवर या पीली नदी की घाटी में यह पहली बार पाया गया।
2: जी,
1: प्राचीन चीन में सोया को गेहूं और धान की तरह पारंपरिक मुख्य फसलों में गिना जाता था।
2: यहां से सोया धीरे धीरे व्यापारिक मार्गों से भारत, कोरिया, जापान, एशिया के अन्य देशों में पहुंचा। सबसे बाद में ये यूरोप और अमेरिका समुद्री मार्गों से पहुंचा।
1: श्रोताओ, इन देशों में सोया पेय उतना ही लोकप्रिय है जैसे भारत में चाय। सामुदायिक खेलकूद प्रतियोगिताओं, जूडो, कराटे और अन्य खेलों में भी इसका बड़ा महत्व है।
2: जी,
1: खिलाड़ी प्रतियोगिताओं के समय इसका

0: विशेष रूप से सेवन करते हैं ताकि उनकी शारीरिक क्षमता और स्फूर्ति बनी रहे।
1: ये गर्म या ठंडा दोनों रूपों में पिया जाता है। कई देशों में सोया पेय के विशेष और आकर्षक स्टॉल लगाए जाते हैं जहां लोग जमा होकर इसे पीते और आपस में बातचीत करते हैं।
0: जहां तक इसकी पैदावार की बात है, ये एक पौध आधारित समृद्ध प्रोटीन का स्रोत है जिसे कई लोग डेयरी के विकल्प के रूप में भी लेते हैं।
1: तकनीकी रूप से ये दलहन यानी दाल है। इसे वार्षिक फसल भी कहते हैं क्योंकि ये साल में एक बार ही होती है। इसके पौधे में हरी पत्तियां, फूल और फलियां होती हैं। इन फलियों में बीज होते हैं। इसके सबसे बड़े उत्पादक देश ब्राजील, अमेरिका, अर्जेंटीना, चीन और भारत हैं।
0: यदि भारत की बात करें तो जलवायु के आधार पर मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में उगाया जाता है। सोया के कई उपयोग हैं जैसे
1: सोया दूध, टोफू, सोया आटा, सोया तेल, सोया सॉस और पशु आहार।
0: अब आइए बात करते हैं आयुर्वेद की। श्रोताओं, सोयाबीन की चर्चा आयुर्वेद के प्राचीन मुख्य ग्रंथों में तिल, मूंग, उड़द और मसूर की तरह स्पष्ट रूप से तो नहीं मिलती, लेकिन आधुनिक आयुर्वेदिक व्याख्याओं में इसे अत्यंत पौष्टिक और शरीर को बल देने वाला पेय माना जाता है।
1: तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी सोयाबीन के बारे में। इसकी पेय संस्कृति बहुत रोचक रही है, खासकर मध्य पूर्व एशिया में, लेकिन अब ये एक वैश्विक पेय माना जाता है और इसकी एक अलग पहचान है।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है चींटी।
1: हिंदी की पाठ्यपुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम को एक सुंदर गीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें चींटी के परिश्रम और लगन के बारे में बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमें भी सफलता प्राप्त करने के लिए चींटियों की तरह लगनशील और परिश्रमी होना चाहिए।
0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। हर पल चलती जाती चींटी,
2: हर पल चलती जाती चींटी,
0: श्रम का राग सुनाती चींटी,
2: श्रम का राग सुनाती चींटी,
0: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
2: कड़ी धूप हो या हो वर्षा,
0: दाना चुनकर लाती चींटी,
2: दाना चुनकर लाती चींटी,
0: सचमुच कैसी कलाकार है,
2: सचमुच कैसी कलाकार है,
0: घर को खूब सजाती चींटी,
2: घर को खूब सजाती चींटी,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: छोटा तन पर बड़े इरादे,
2: छोटा तन पर बड़े इरादे,
0: नहीं कभी घबराती चींटी,
2: नहीं कभी घबराती चींटी,
0: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
2: नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर,
0: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
2: पर्वत पर चढ़ जाती चींटी,
0: काम बड़े करके दिखलाती,
2: काम बड़े करके दिखलाती,
0: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
2: जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी,
0: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
2: मेहनत ही पूजा है प्रभु की,
0: हमको यही सिखाती चींटी,
2: हमको यही सिखाती चींटी।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो सुना आपने, कैसा लगा ये गीत? अच्छा लगा ना? तो अब सुनते हैं चींटियों के बारे में कुछ और मजेदार बातें। चींटियां बहुत मेहनती होती हैं। वे समूह में यानी मिलजुल कर काम करती हैं। और तो और, आपको मालूम है अकेली चींटी अपने वजन से 50 गुना अधिक वजन उठा सकती है। इतना ही नहीं, आपने जरूर देखा होगा कि यदि कोई चींटी वजन नहीं उठा पाती तो दूसरी चींटियां तुरंत उसकी मदद के लिए आ जाती हैं। है ना मजेदार बात? तो क्या सिखाती हैं हमें ये चींटियां? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना और मेहनत से काम करना चाहिए। अच्छा, अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा मालूम कीजिए कि चींटियां कितने रंगों की होती हैं। एक बात और, इस कविता में चींटी को कलाकार कहा गया है। जरा सोचिए और बड़ों से भी पूछिए कि उन्हें कलाकार क्यों कहा गया है। चींटी, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, संगीतकार विकास शंकर, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर चार्वी, नव्या और एंजल, निर्माण सहयोग चेतना शर्मा, निर्देशन तथा निर्माण अजीत होरो। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम चींटी। आशा है कि आपको जरूर पसंद आया होगा।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: और आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है गांव की धरती।
2: कार्यक्रम में भारत के ग्राम्य जीवन के बारे में बताते हुए वहां के सरल जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया गया है। कार्यक्रम में गांव की हरियाली, खेतों और स्वच्छ पर्यावरण की भी चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि हम भी अपने पर्यावरण का विशेष ध्यान रखें।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गांव की धरती, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है झरना।
1: ये कार्यक्रम भूगोल की एक पाठ पर उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि झरनों का निर्माण कैसे होता है। इन जानकारियों को एक रोचक गीत और संवादों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का समय यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।

स्टूडियो की घड़ी में दोस्तों 3:57:42 और थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम कैफे कोलकाता राजीव और महुआ के साथ। फिलहाल पॉपी को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपके साथ 5:15 पर 100.1 FM गोल्ड पर।

0: টেলে লয়ের অ্যাপ, ওয়েবসাইট www.tele-law.in অথবা টোল ফ্রি নাম্বার 14454 এর মাধ্যমে বিনামূল্যে আইনি সহায়তা লাভ করা সম্ভব।
1: পুরানে দিনোঁ কা সফর, পুরানে গীতোঁ কা সিলসিলা, আপ সুন রহে হ্যায় ছায়ালোক, ছায়ালোক 107 FM রেনবো পর। পুরানে দিনোঁ কা সফর, পুরানে গীতোঁ কা সিলসিলা, ছায়ালোক, ছায়ালোক।
2: সেলুলয়েড সুপার হিটস, सेलुलॉयड सुपर हिट्स में आपका स्वागत है दोस्तों, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया लोक पॉपी के साथ ओनली ऑन 107, जहां आज के दिन हम आपको बताते हैं फिल्मों के कुछ अनसुने किस्से, अनसुनी बातें जो साधारण लोग नहीं जानते हैं। तो उन बातों का, वो बातों का सिलसिला हमने शुरू कर दिया है, मतलब हम करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 7:04 हो चुके हैं। तो ऐसे में हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, बने रहिए, साथ रहिए, मज़ेदार गाने तो रहेंगे ही और मज़ेदार किस्से भी सुनाऊंगी आपको, तो सुनते रहिए, साथ रहिए। 107 FM रेनबो पर पॉपी है आपके साथ ओनली ऑन 107। तो चलूँ

कभी हकीकत कभी फसाना लेकर फिल्में बनती हैं बॉलीवुड की, और इन बॉलीवुड फिल्मों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं लेकिन बिहाइंड द सीन्स के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं होता है। फिल्म बनती है, कश्मकश होती है, बहुत सारे फैसले लिए जाते हैं, कभी उन फैसलों को घुमा दिया जाता है, मतलब हम जो सोचते हैं वो कर नहीं पाते हैं, फिर वो चाहे डायरेक्टर्स हो, प्रोड्यूसर्स हो, एक्टर्स हो, एक्ट्रेस हो, तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आम लोगों तक नहीं पहुंचती हैं, और हमारी यही कोशिश होती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको उन चीज़ों को बताएं जो आपसे कोसों दूर है, जो जिसकी हकीकत आपको मालूम नहीं। ऐसे ही बात करूं अगर बॉर्डर फिल्म की, जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर एक ऐसी फिल्म है शायद ही किसी ने नहीं देखा होगा। 1997 में बनी ये फिल्म, जेपी दत्ता ने इसका निर्देशन किया था, और ये फिल्म लोंगेवाला जंग पर जायज था जो कि 1971 में हुआ था। आपको बताना चाहेंगे कि सनी देओल का जो स्पीच था, जो उनके जो डायलॉग्स थे, वो दरअसल असल में ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने सेट पर आकर लिखवाया था। हर एक डायलॉग वो उन्होंने खुद लिखवाया, और वो जो अल्फाज थे जज्बात से भरे, पेट्रियोटिज्म से भरे, देशभक्ति से भरे, वो सारे डायलॉग्स उन्हीं के थे। जब फिल्म रिलीज हुई तो फौज ने फ्री स्क्रीनिंग करवाई सभी कैंटोनमेंट में, और सुनील शेट्टी का हाथ कटने वाला सीन देखकर ऐसा कोई जवान नहीं था जिसके आंखों से आंसू नहीं निकले थे। तो ऐसे ही बातों के साथ हम आपको सुनाएंगे बहुत सी बातें, और आपको सुनते रहना है, उसके लिए जानना है कि क्या है इन फिल्मों के पीछे की बातें, तो सुनिए हमारा यही कार्यक्रम सेलुलॉइड सुपर हिट्स। अगला गीत हम आपको सुनाएंगे फिल्म बाजीगर से, जिस गीत का पिक्चराइजेशन हुआ ही नहीं,

बाजीगर से आपने सुना ये गीत, और आपको बताएं कि बात जब अब्बास मस्तान की होती है तो वो हमेशा कुछ नया परोसने के इरादे से दिमाग मतलब इरादा रखते हैं, और ऐसा ही कुछ इस फिल्म के साथ हुआ। बाजीगर फिल्म का जो किरदार था, जिस किरदार को आपने देखा शाहरुख खान को करते हुए, इस किरदार को पहले अनिल कपूर सलमान खान को ऑफर किया गया था, लेकिन दोनों ने ही कहा भाई हीरो नेगेटिव कैसे बन सकता है यार, करियर खराब हो जाएगा। लेकिन शाहरुख उस समय नए थे, उन्होंने हाँ तो कर ही दी और साथ में ये भी कहा कि मैं हीरो ही नहीं बल्कि मैं एक एक्टर हूं, मैं एक अभिनेता हूं। तो ये थी कहानी, और फिर आप जानते हैं व्हाट हिस्ट्री हैज गिवन अस। जी हाँ, इस फिल्म की सक्सेस को हर कोई जानता है, हर कोई समझता है, और इसकी कहानी जो थी बिल्कुल एकदम हटकर थी, अलग थी। एक दौर चला नेगेटिव हीरो का उसके बाद से। लेकिन एक और बात खास जो आपको बताना चाहूँगी कि इस फिल्म में इस गीत को पिक्चराइज, इस गीत को रिकॉर्ड तो किया था, इस गीत की रिकॉर्डिंग की गई थी और इसे गाया था, आपको बताएं, माफ कीजिए, विनोद राठौर और अलका याग्निक ने, लेकिन इस गीत का पिक्चराइजेशन नहीं हुआ था। इस गीत को कहीं पर भी आप इस फिल्म में नहीं देखते हैं। एक ऐसा ही और गीत हम आपको सुनाएंगे जो कि फिल्म शोले में हुआ था। शोले पिक्चर रिलीज हुई, लेकिन ये गीत जो शोले फिल्म से थी, और ये एक ऐसा गीत था जहाँ एक गायक ने, काफ़ी कई सारे गायक ने अपनी आवाज़ दी, लेकिन इस गीत को किसी ने देखा नहीं। जी हाँ, इस गीत का पिक्चराइजेशन नहीं हुआ। हाँ, सुना है कई बार, और मज़े की बात एक और है कि इस गीत में किशोर कुमार, मन्ना दे, भूपिंदर के साथ आप आनंद बख्शी को भी सुनेंगे। आइए सुनते हैं वो गीत जो कि शोले के लिए रिकॉर्ड तो की गई थी, लेकिन वो पिक्चराइजेशन उसका नहीं हुआ था।

जाता है कि इस गीत का पिक्चराइजेशन हुआ था, जी हाँ, जेल के सीन में इस गीत का पिक्चराइजेशन हुआ था, लेकिन समहाउ पिक्चर की ड्यूरेशन या कोई वजह हुई होगी कि इसको काट दिया गया था। और ऐसे गीत हम आपको सुनाएंगे। वैसे स्टूडियो की घड़ी कह रही है 7:32, बस 33 होने वाला है, जी हाँ 33 हो चुका है। तो आपको बताएं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेलुलॉइड सुपर हिट्स पॉपी के साथ, और हमारा ये कार्यक्रम चलता रहेगा रात के 9 बजे तक। सुनते रहिए, साथ रहिए।

107 FM रेनबो पर कम्स अनदर इंटरेस्टिंग स्टोरी। जी हाँ दोस्तों, एक और मज़ेदार किस्सा आपको बताऊं कि एक फिल्म के हीरो ने 15 दिन तक बहुत सारा काम किया, मतलब उस किरदार में घुसने के लिए, उसको जीवंत करने के लिए बहुत कुछ किया, और साथ ही साथ बम्बई के मौसम में, आप जानते हैं कि बम्बई में ठंड बोलकर कुछ होती ही नहीं है, वहाँ के लोग स्वेटर या पुलोवर्स या कोट पैंट नहीं पहनते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम ही कुछ ऐसा है। और इतनी उमस, इतनी गर्मी में उस किरदार ने, और जो कुछ भी किया उस अभिनेता ने, कुछ और जो कुछ भी किया, साथ में 15 दिन तक वो नहाए नहीं। जी हाँ, द बाथ वॉज नॉट टेकन, नहाना नहीं हुआ, जस्ट बिकॉज कि उन्हें किरदार में घुसना था। जी हाँ, आपको बताएं कि ये और कोई नहीं बल्कि मनोज वाजपेयी थे, और फिल्म का नाम था सत्या। रामगोपाल वर्मा ने बोला कि उन्होंने कहा कि भीखू मात्रे जो किरदार वो निभा रहे थे, वो किरदार को बिल्कुल गंवार दिखना है। ऐसे में उस गंवारपन के लिए इन्होंने इतनी सैक्रिफाइस दी। जी हाँ, मनोज वाजपेयी ने इतना सैक्रिफाइस किया, वो सैक्रिफाइस किया था, हम आपको बताएंगे। उन्होंने चौल में रात बिताई, कई रात अपने घर से, अपने फ्लैट से, अपने ऐश वाले लग्जरी को छोड़कर चौल में रात बिताई, टपरी पर जाकर चाय पी, और सबसे बड़ी बात कि 15 दिन तक उन्होंने नहाया नहीं, ताकि उनका जो स्किन है, जो त्वचा है, वो खुरदरी लगे और बिल्कुल जीवंत लगे उस किरदार में। और सबसे खास बात कि मुंबई का किंग कौन वाले सीन को उन्होंने केवल एक टेक में लिया था, जो कि काफ़ी असरदार सीन था। तो ऐसे सीन्स, ऐसे फिल्म्स, ऐसे कहानियों के साथ आइए सुनते हैं फिल्म सत्या का ये गीत, जो बहुत ही मशहूर हुआ।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: सेल्यूलॉइड सुपर हिट्स।

तो है जी हाँ, ये लहजा, ये कशिश, ये और कहाँ हो सकता है, ये तो सिर्फ सिर्फ आशा जी के गले में ही हो सकता है। और इस कशिश को और भी तराशा गया एआर रहमान के म्यूजिक के द्वारा। आपको बताना चाहेंगे कि राम गोपाल वर्मा ने जब इस फिल्म को बनाया तो उन्होंने एआर रहमान को हाथ पकड़कर खींचा मुंबई की ओर, क्योंकि रहमान तो तमिल फिल्म रोजा के बाद ही इस फिल्म के द्वारा मुंबई आए। दरअसल वो मुंबई आए ही नहीं, वो अपना सारा यूनिट, अपना सारा लैब हम कह सकते हैं, वो सारा का सारा चेन्नई में था। और ये चाहते थे, यानी कि राम गोपाल, डायरेक्टर प्रोड्यूसर राम गोपाल वर्मा चाहते थे कि उर्मिला के जो डांस नंबर्स हैं, खास करके ये जो गाना था तन्हा तन्हा, इसके लिए उन्हें एक वेस्टर्न इफेक्ट चाहिए था। और इसके लिए वो रहमान से कह रहे थे कि उन्हें कुछ ऐसा ही चाहिए, लेकिन रहमान थे कि वो मुंबई की ओर आना नहीं चाहते थे। उन्होंने क्या किया, ये उन्हें जो चाहिए था वो बिल्कुल वहीं से, यानी कि चेन्नई से ही उन्होंने जो भी उनकी फरमाइश थी संगीत के माध्यम से, साउंड के हिसाब से, वो वहीं से उन्होंने पूरा किया। और तो और पूरा एल्बम फ़ोन पर ही उन्होंने ब्रीफिंग की और उन्होंने फ़ोन पर ही सुना। और एक और गीत जो हाय रामा, उसका मुखड़ा रहमान ने तो कार के सिग्नल पर रुकते रुकते जाते जाते ही किया था। और आपको मालूम है रेस्ट इज हिस्ट्री, किस तरह का ट्रैक था, किस तरह की खूबसूरती थी और किस कदर की दीवानगी थी इस गीत के लिए। आइए सुनते हैं एआर रहमान और स्वर्णमाला की आवाज़ में, जी हाँ माफ़ कीजिए, स्वर्णलता की आवाज़ में। हरिहरन और स्वर्णलता, इन दोनों की आवाज ने क्या जादू किया था, वो आपके सामने है।

Lloyd Super Hits. पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

सेलिलॉइड सुपरहिट्स के दूसरे घंटे में दोस्त एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं 107 एफएम रेनबो पर पॉपी को, और हम आपको बता दें कि हम आपके साथ हैं ओनली ऑन 107 एफएम रेनबो पर, और लेकर आए हैं कुछ ऐसे किस्से जो शायद आपको मालूम नहीं, लेकिन हमारी कोशिश ये है। वो कहते हैं ना कि हम एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज को भी बढ़ाते हैं। फिलहाल स्त्री 2 का आपने गाना सुना एक छोटे से ब्रेक के पहले, देश और दुनिया के खबर के पहले। दूसरे घंटे की शुरुआत भी हम स्त्री फिल्म से ही करेंगे। वजह क्या है वो बताएंगे, लेकिन पहले आपको गीत सुनाएंगे। तो सुनते रहिए, साथ रहिए 107 FM रेनबो पर। पॉपी है आपके साथ ऑलवेज।

अमिताभ भट्टाचार्य का गीत, और सच बताऊं आई जस्ट लव दिस सॉन्ग, इतना प्यारा सॉन्ग, काश काश कोई हमेशा इस तरह मेरे लिए ऐसा गाए। खैर जोक सपाट, बात हो रही है स्त्री फिल्म की, और स्त्री फिल्म में आपने अगर ध्यान से देखा होगा, अगर दोनों मतलब दोनों पार्ट्स को, सीक्वल थी, आपने दोनों फिल्मों को अगर देखा होगा तो श्रद्धा का नाम कहीं नहीं दिखता है। जी हाँ, दोनों पार्ट्स में उसके कैरेक्टर यानी कि उसके किरदार का नाम कहीं भी नहीं बताया गया है। अमर कौशिक का ये कहना था कि अगर नाम बता देंगे तो मिस्ट्री ही खत्म हो जाएगी, भाई वो स्त्री है, नाम की क्या जरूरत। और सबसे बड़ी बात जो मतलब सबसे उलझन हुई थी वो था बेचारा सरकटे का मॉन्स्टर। सरकटे का जो मॉन्स्टर का जो कॉस्ट्यूम था वो इतना भारी भरकम था कि उस एक्टर को हर 20 मिनट में ऑक्सीजन देना पड़ता था। एसी सेट पर 16 डिग्री रखा था, वरना वो हमेशा थोड़ी देर में ही बेहोश हो जाता था। उसका जो लिबास था, उसका जो कॉस्ट्यूम था, वो इतना भारी भरकम था। तो पता नहीं ये जो किरदार हैं कितना कुछ झेलते हैं जस्ट और जस्ट हमारी खुशी के लिए, हमें रियल लाइफ से जोड़ने के लिए, रियलिटी के साथ जुड़ने के लिए पता नहीं वो क्या क्या कर जाते हैं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी 8:08, हम क्या करने जाएंगे, हम आपको प्यारा सा गीत सुनाएंगे, सुनते रहिए, साथ रहिए, एंड हियर कम्स अनदर रोमांटिक ट्रैक ओनली फॉर यू ऑन 107 FM रेनबो पर, जहां पॉपी है आपके साथ ओनली ऑन 107।

सेंटिमेंटल सॉन्ग. जी हाँ, बहुत कहीं पे छू जाता है, स्पर्श कर जाता है. एनीवेज बात करेंगे एनिमल का. जी हाँ, एनिमल फिल्म में कुछ चीज़ें जो बिहाइंड द सीन है वो आपको बताने जा रहे हैं. संदीप रेड्डी वंगा ने बॉबी को कहा कि जब एंट्री वाली सीन हो तो कुछ मत करना, बस एंट्री लो और आंख से मारो. तो ऐसा ही कुछ बॉबी ने किया. और सिर्फ इतना ही नहीं, जमाल कुडू सॉन्ग पर बॉबी ने अपना स्टेप खुद बनाया था. और आज भी ये सॉन्ग जब भी किसी पार्टी में बजती है तो लोग पता नहीं डांस फ्लोर में ग्लास को लेकर मुंह के ऊपर ग्लास लेकर आ ही जाते हैं. ये स्टेप भी उन्हीं का बनाया हुआ था, यानी कि बॉबी ने खुद इसको इन्वेंट किया था. इन्वेंट बोलूं या डिस्कवर, एग्जैक्टली आई डोंट, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप समझ लें. लेकिन हाँ, ये स्टेप उनके खुद का था. सिर्फ इतना ही नहीं, शूट के टाइम बॉबी का पैर ट्विस्ट हो गया था, तो उसमें स्प्रेन या कि मोच आ गई थी. लंगड़ा कर चल रहे थे बेचारे, और वही शॉट फाइनल कट में चला गया. डायरेक्टर ने कहा, भाई इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता.

20:20 यानी कि 8:20 और आपको बताएं, आपने सुना अरिजीत की आवाज में फिल्म डंकी का ये खूबसूरत रोमांटिक ट्रैक। वैसे आपको बताऊं कि जब बात राजकुमार हिरानी की फिल्म की है तो जाहिर सी बात है कि सेट पर एक किस्से नहीं किस्से पे किस्से मिलेंगे। जी हाँ, 2023 की एंडिंग वाली

फिल्म पर बातें बहुत हैं जो आपके साथ मैं शेयर जरूर करना चाहूंगी। हिरानी की फिल्म में एक्टर हमेशा फीस कम लेते हैं। शाहरुख ने भी डंकी के लिए एक रुपया नहीं लिया, नॉट अ सिंगल पेनी। लेकिन फिर ऐसे कैसे हो सकता है? हुआ ये था कि डील थी प्रॉफिट शेयरिंग की। फिल्म में 470 करोड़ CR ज्यादा फीजिबल लगता है। 470 CR वर्ल्ड वाइड कमाए तो शाहरुख का हिस्सा बना 100 CR प्लस। सिर्फ इतना ही नहीं, हार्डी वाला एज जंप, उसके लिए प्रोस्थेटिक्स को यूज किया गया। अब 25 साल के हार्डी से 55 साल का हार्डी दिखने के लिए VFX नहीं प्रोस्थेटिक्स यूज किए गए। शाहरुख को रोज हर रोज 5 घंटे लगते थे बुड्ढा बनने में। गाल, गर्दन, हाथों पर सिलिकॉन लगता था। और लास्ट दिन जब पैकअप हुआ तो शाहरुख ने मेकअप दादा को गले से लगा के बोला, दादा मुझे मेरे पापा याद आ गए। तो ऐसा था उनका मेकअप। सिर्फ इतना ही नहीं, लंदन वाला जो वीजा सीन वो रियल एम्बेसी में शूट हुआ था। और हिरानी को फेक सेट नहीं चाहिए था। इंडियन एम्बेसी लंदन में 2 दिन का परमिशन लिया और तब जाके वो सीन शूट हुआ। असली वीजा ऑफिसर्स जूनियर आर्टिस्ट बने और इसलिए सीन इतना रियल लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लुटपुट गया सॉन्ग में तापसी 3 बार गिर गई। डेजर्ट में शूट था, 45 डिग्री टेम्परेचर, तापसी ने हील्स पहनी थी रेत पर और डांस करते हुए 3 बार बैलेंस बिगड़ा और बेचारी गिर गई। 3री बार शाहरुख ने पकड़ लिया, वही शॉर्ट फिल्म में है। और तापसी ने बोला, शाहरुख सर ने बोला गिर जाओ, मैं हूं ना, फिर डर नहीं लगा। तो ऐसी कुछ बातें हैं मजेदार जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। सुनते रहिए, साथ रहिए। और अगला गीत इसी फिल्म से सुनाऊंगी, बहुत अच्छा गीत है, दिल को स्पर्श करने वाला, छूने वाला गीत। बने रहिए, साथ रहिए। हम हैं आपके साथ ओनली ऑन 107।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

थ्री इडियट्स से आपने सुना ये गीत, और आपको बताऊं कि 2009 की फिल्म पर आज भी हॉस्टल के कमरों में ये फिल्म चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, राजू हिरानी की सबसे बड़ी हिट के पीछे के किस्से कुछ इस तरह से हैं। आपको क्या क्या मैं बताऊं, बहुत सारे किस्से हैं इस फिल्म से जुड़े हुए। पहले फिल्म का टाइटल हुआ था इंजीनियर्स, उसके बाद इसका नाम रखा गया छोटे बड़े। लेकिन चेतन भगत की जो बुक 5 पॉइंट्स समवन पर बेस्ड थी, और इसका क्रेडिट लेकर कंट्रोवर्सी हो गई। चेतन ने बोला नाम ठीक से बिल्कुल नहीं लगा। लास्ट में आमिर ने कहा थ्री इडियट्स, थ्री इडियट्स गाली नहीं है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट, और यही टाइटल लॉक कर दिया गया। और फिल्म ने 460 करोड़ का बिजनेस किया, वही 460 CR। चेतन को बाद में एंड में पूरा क्रेडिट मिला। सिर्फ इतना नहीं, शूट के टाइम आमिर 44 के थे, यानी कि 44 ईयर्स, लेकिन कॉलेज स्टूडेंट लगने के लिए उन्हें रोज 3 घंटे एक्सरसाइज करना पड़ता था और डाइट तो सुपर डुपर कंट्रोल करना पड़ा था। सिर्फ इतना नहीं, चेहरे पर से रिंकल्स हटाने के लिए हर सीन से पहले उन्हें आइस से मसाज करना पड़ता था। और तो और, फुनसुक वांगड़ू वाला बुढ़ा लुक भी असली है, 2 घंटे प्रोस्थेटिक मेकअप लगता था लद्दाख में, वो भी -14 डिग्रीज में। सिर्फ इतना ही नहीं, वायरस के बारे में अगर बात करें, वायरस का घर IIM बेंगलोर है। वायरस का ऑफिस और घर IIM बेंगलोर कैंपस में शूट हुआ, और बोमन ईरानी ने असली IIM डायरेक्टर प्रोफेसर दिनेश को 2 दिन ऑब्जर्व किया। और उस ऑब्जर्वेशन में था क्या, उनके चलने की स्टाइल, उनका पेन घुमाने का स्टाइल, उनका देखने का स्टाइल। और तो और, स्टूडेंट वाले सीन में जो भीड़ है वो भी IIM का रियल स्टूडेंट्स टीम था। उनको लेक्चर बंक करके शूट करने का मौका मिला था, फिर क्या चाहिए था। तो ये थी इस फिल्म के बारे में कुछ एक जानकारी। सिर्फ इतना ही नहीं, और तो और, इस फिल्म में कहा जाता है कि फिल्म के एंड में जो स्कूल दिखाया है वो लद्दाख का SECML स्कूल है। फिल्म के बाद वहाँ एडमिशन 3 टाइम्स बढ़ गए। हिरानी हर साल वहाँ डोनेशन भेजते हैं। थ्री इडियट्स में इंजीनियरिंग कॉलेजेस का कल्चर बढ़ा दिया, और आज भी जहाँ पना तो सी ग्रेट बोलकर माफ़ी मांगते हैं लड़के।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

साल 2025 के अगर कामयाब फिल्मों की बात करें तो ये फिल्म, जी हाँ, धुरंधर का, जिसका आपने गीत सुना, ये सबसे आगे माना जाता है। जी, आदित्य धार और रणवीर सिंह का कॉम्बो मूवी अपने आप में एक अलग ही चीज थी। आपको बताएं कि फिल्म में 1975 का बॉम्बे को फिर से रिक्रिएट किया गया। फिल्म सिटी में 2 एकड़ का सेट लगाया गया, एम्बेसडर कार, HMT वॉच, राजदूत बाइक और 1975 वाले ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया गया। 300 जूनियर आर्टिस्ट को 3 महीने ट्रेनिंग दी गई ताकि 1975 में लोग कैसे चलते थे, कैसे बात करते थे, कैसे उनका हेयर स्टाइल था, ये सारा चीज दिमाग में रखकर इस फिल्म को बनाया गया। एक सीन में 1975 का CST स्टेशन यानी कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस दिखाया गया और VFX से नहीं बल्कि पूरा सेट वैसे बनाया गया और इस सेट की कीमत थी 9 CR। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सी बातें हैं इस फिल्म के साथ। अक्षय खन्ना ने 7 साल बाद कमबैक किया था। जी हाँ, 2016 के बाद प्रॉपर रोल उन्होंने नहीं किया और आदित्य धार को 8 महीने लगे थे उन्हें मनाने के लिए। रोल इतना डार्क था कि अक्षय ने सेट पर किसी से भी बात नहीं की थी 40 दिन तक और क्रू ने नाम रखा था मेथड विलन। रणवीर तो ये कहते थे कि इनके सामने डायलॉग बोलते वक्त मुझे तो डर लगता है, ऐसा था उनका पर्सनैलिटी वाइल्ड परफॉर्मेंस। तो ये थी कुछ बातें जो हमने आपको बताई और सिर्फ इतना ही नहीं, रणवीर ने जो भी स्टंट्स आपने फिल्म में देखे हैं वो सब उन्होंने खुद किया है और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उनकी हड्डी टूटी है। बैंकॉक में कार चेस सीक्वेंस में रणवीर ने बॉडी डबल लेने से मना कर दिया। एक सीन में चलते ट्रक से जंप करते वक्त पैर की जो छोटी उंगली थी वो टूट गई। 2 घंटे के रेस्ट के बाद वो फिर से शूट पे आ गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, क्लाइमेक्स में 7th फ्लोर की बिल्डिंग से रस्सी से कूदना था, रणवीर ने 17 टेक दिए बिना हार्नेस के। एक्चुअली जुनून होता है, ये ऐसे नहीं होता, ये जुनून होता है कुछ कर दिखाने का, तब जाके अपने आप को जलाकर शायद कुछ ऐसा निकल कर आता है, निखर कर आता है।

करोड़ों रुपए का सेट नहीं था, वीएफएक्स नहीं थी, स्टार तक नहीं था कोई खास, सिर्फ और सिर्फ कुछ था इस फिल्म में तो कहानी, द स्टोरी लाइन। और ये स्टोरी लाइन इतना स्ट्रॉन्ग था कि 25 CR कमाए सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। जापान में ये सिनेमा 100 दिन चली और तो और ऑस्कर में भी शॉर्टलिस्ट हुई। और आपको बताऊं, इस फिल्म का नाम पहले रखा गया था टू ब्राइड्स, लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके रखा गया लापता लेडीज। लापता लेडीज की बात हम कर रहे हैं, एक ऐसी मूवी जो बहुत ही कम बजट में बनी थी और कोई सोच भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ एक थॉट प्रोसेस था, एक सोच थी महिलाओं के बारे में। और मूवी ने दिखा दिया कि कुछ नहीं होता है अगर फिल्म के लिए कुछ भी नहीं है, ना सेट है, ना वीएफएक्स है, ना कोई बड़ा किरदार है, ना कोई बड़ा स्टार कास्ट है, लेकिन अगर कहानी में वो कहते हैं ना पकड़ है, तो फिल्म पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है। बहुत मज़ेदार किस्से हैं इस फिल्म के साथ जुड़े हुए, वो हम आपको ज़रूर बताना चाहेंगे। फिल्म की शूटिंग हुई थी एमपी के गांव बामुलिया में। सुबह सुबह आमिर कुर्ता पजामा गमछा बांध के पहुंच जाते थे और सेट पर चाय बनाया करते थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने पूछ लिया, बेटा हीरो हीरोइन कहाँ हैं, वो तो दिखते ही नहीं। 15 दिन बाद जब किसी ने गूगल किया तो पता चला कि ये तो 3 इडियट्स वाले आमिर है। सिर्फ इतना ही नहीं, नितांशी गोयल और प्रतिभा रांटा ने 1 महीना एमपी के गांव में गुजारा, असली दुल्हनों के साथ रही, घूंघट में कैसे चलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना खाना चाहिए, वो सारा कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया और तब जाके ये फिल्म बनी। प्रतिभा को ट्रेन का सीन करने के लिए 7 बार असली ट्रेन में चढ़ाया और उतारा गया ताकि उसके भीतर से वो जो डर है चलती ट्रेन में उतरना या चढ़ना वो निकल जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सी बातें इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं। स्पर्श श्रीवास्तव को किरण ने व्हाट्सएप पर ऑडिशन भेजने को बोला था। स्पर्श ने गांव के खेत में बैठे बैठे 1 मिनट का वीडियो बनाया और भेज दिया। तो ये थी इस फिल्म की खासियत। आइए जाते जाते एकदम लास्ट हिट सॉन्ग सुनते हैं और इसके साथ ही आपसे इजाजत लेते हैं।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
0: What happened?
2: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे?

एग्जैक्टली एट 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया. इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं. बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया. पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया. आई एम सॉरी. एक्सक्यूज मी.

ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानुष थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्के के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। हां खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। शायद ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है

107 FM रेनबो सुनची आपके लिए हिंदी छायाचित्र कार्यक्रम अनुष्ठान लता मंगेशकर एवं संजीव अभयंकर कंठे पर गान माचिस फिल्म थेके